गुलिस्तान में सब गुल है, बस एक अगर हूँ तो खार में हूँ। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो, बहुत ही गफलत शियार में हूँ। रहा मैं बेकार जिंदगी भर, बस अब तो मशगूल कार में हूँ।

क्यों उसको रखा किसने, पहले आग में डाला फिर आग को फूल किया किसने, उसके नाम की गुन गाते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह।

मुझसा कोई बदकार न होगा, कौन सी मैंने की न बुराई। ओ अल्लाह, इन योर एंटायर क्रिएशन देर इज नो वन मोर सिनफुल देन माई सेल्फ। वी ऑल शुड थिंक ऑफ अवर सेल्व एज द मोस्ट सिनफुल वंस ऑन द सर्फेस ऑफ दिस अर्थ। वी डोंट नो वेन द अदर पर्सन मेक्स तोबा एंड बिकम्स द महबूब ऑफ अल्लाह ताला। Oh Allah, which sin is there that I have not committed in my life?